0: cab.org.nz. Not sure? Ask us. Ka ora I te marama, pā tai mai. Citizens Advice Bureau, 0800 367 222 or 0800 FORCAB.
1: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at mpr.nz or call 06 357 9340.
2: Sunday's sermon brings you the preaching of Pastor David Hughes from Crosspoint Church in Palmerston North, exploring and explaining the message of the Bible. Listen every Sunday at 11 a.m. or online anytime at mpr.nz/show/Sunday sermon or on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts.
3: The Gift of Life for You on Manawatu People's Radio. Friday at 11 a.m, Sunday at 10 a.m.
4: An hour of easy listening gospel music, Bible teaching, as well as news about up-and-coming events at Crossroads Church, Palmerston North.
5: The world of business affects people.
6: We saw people really love coffee, so we decided to take it to the next step and make a business out of it.
5: It affects nations.
7: There's a lot of emphasis on going local.
5: It affects the environment.
8: Infinite growth on a finite planet is a recipe for disaster.
5: And it affects you.
9: I would not go to buy any of these anymore.
5: Get all the latest in World Business Report from the BBC.
1: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on MPR.
10: Namaskar, I'm Tom. I'm Malad.
11: And I'm Sharpi.
10: And this is not a show.
11: This is not a show.
10: Pat jhad hai.
11: Pat jhad.
10: Pat jhad hai.
11: Par kitna sundar hai.
10: Aha.
11: Matlab jo colors ho rahe hai na. Kya mast colors ho rahe hai.
10: इतने कलर मैंने पेड़ पौधों पे मैं देखूंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था.
11: एक्चुअली व्हेन यू गो टू दैट विंडमिल फार्म ऊपर तो वहां से देखो कितने प्यारे रंग दिखते हैं. वैसे भी मतलब यू नो यू गो टू समर हिल उस तरफ दिखते हैं. यू गो टू मेसी यूनिवर्सिटी उस तरफ बहुत दिखते हैं. ब्रिज की तरफ जाओ वहां बहुत दिखते हैं. न्यू ब्रिज की तरफ सो इतने ब्यूटीफुल कलर्स. यू राइट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ लाल हो सकते.
10: हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मेरे को पेड़ पे पीच कलर दिखेगा
11: बिना फूल के. मतलब पेड़ पे कलर इज लाइक फॉर अस इट्स लाइक ग्रीन ब्राउन एंड कलर ऑफ द फ्लावर.
10: पत्तों की बात कर रहा हूँ.
11: हाँ
10: मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था. एंड there is this वो cherry blossom का पेड़.
11: हाँ हाँ pink.
10: हाँ तो not only cherry blossom का color अलग है ठीक है मतलब बहुत अलग है but उसके पत्तों का भी color अलग है.
11: Yeah that's true.
10: मतलब उसके पत्तों पे भी color है. बहुत
11: पत्तों पे green color है but that's a very different kind of tree.
10: हाँ और अभी बिकॉज वो भी झड़ रहे हैं उनका भी कलर येलो मरून ऐसे हुआ जा रहा
11: है. नहीं वो तो है बहुत ब्यूटीफुल है. साउथ आइलैंड में ना एक जगह है.
10: साउथ आइलैंड में बहुत जगह है.
11: मतलब एक जगह है जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं. आई वॉज देयर लाइक फ्यू ईयर्स अगो. आई वॉज देयर ड्यूरिंग दिस टाइम अप्रैल मई में मैं वहाँ पे थी और मुझे मतलब आई टुक सम फोटोज एंड आई फेल इन लव विद दोस फोटोज बिकॉज ऑफ द कलर्स. सो इफ समबडी आस्क मी व्हाट इज योर फेवरेट सीजन इन न्यूजीलैंड आई ऑलवेज से ऑटम. आई नो मतलब समर भी है बट ऑटम इज लाइक बिकॉज ऑफ द कलर्स आई जस्ट लव ऑटम.
10: हाँ फॉर मी ऑटम हैज बीन लाइक वेरी शॉर्ट ऑलवेज.
11: ओके
10: ठीक है. अप अंटिल
11: शॉर्ट ही होता है ना.
10: हाँ मतलब शॉर्ट मतलब इतना शॉर्ट के मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि ऑटम एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है क्योंकि बीइंग इन मुंबई मेरे को इतना ज्यादा कुछ दिखा नहीं था या फिर मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया था. बट यहाँ पे इट्स इट्स